इमोइन नम हम रोगो रोगो नहीं मतंगे गए रही कहूँगा कौन के नुकन रही तरीके तरह मैं हुआ गया ती मतो रही किन मैं उरी एफएम में इची 9.9 गया बा सोरा अरा रोगो रोगो अरा मैं ते ते नहीं मतंग ना इमोइन अंगने सवा के ने बन कहाँ बुश ने मैं हुआ गया मैं नन नंगने ये जगन कहूँगा तो मत बनाने का कहता वन कहते ग्रोइन ना कोई मुझे ने उकसन रोना रे मैं हुआ गया तो मैं डाउन आयो सिना कहता वरी करा कम अरा पोता के ने मकुरिया ते मिस से के कहीं गई है पोतो का ना कौन पोसुम ते इंद पकान दाया यो के ने कहा पोस आन का कहते ग्रोइ कुरार पगा ते मिस्से मैं तार मकुरी ने कबेर ने मिस्से कम ने पेरे ने ते करवाई रिकी रही सिनी आया बंडो का मी पोंगे कम ने ते करवाई न मी पोंग आया रको ते करवाई रिकी मैं ते ने मैं हुआ आगे आपन मैं मेरी एफएम 89.9 सौरा ना कौन नरनोगरों ने मैं तंग मंदता है यो